वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़ी सोतरी पार, जो श्रद्धा कर से मदे गुरु पार उतारण हार।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है। जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै। कर नौने दयावे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो शब्द विचाराधीन है ओ पावन शब्द पहले पातशाह तन तन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रचना तो उच्चारण किया होया। आसा राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 414 उत्ते सुशोभित है। आपा विचार कर रहे हाँ इस पावन शब्द विच जो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने रहाउदा बंद बख्शिया उस दे विचार आपा कर रहे हैं। सतगुरु जी बख्शिश करदे ने कहा चलो हो मन रहो घरे। समझाउणा कीती क्योंकि जो रहाउदा बंद हुंदा है रहाउदा पाओ आप सारे जानदे हो ठहराओ ते रहाउ दा जिहड़ा बंद हुंदा है रहाउ दी जिहड़ियां तुक्कां हुंदियां ने इवें मन्नो कि ओ पूरे शब्द दा सार है पूरे शब्द दा तत् है पूरे शब्द दा निचोड़ है। बाकी जिहड़े पदे ने ओ इस तत् दा फैलाओ है उस दा विस्तार है। जदों आपां सलोक ते पौड़ियां वारां विच पढ़दे हां ते जिहड़ा उहदे च जिहड़े मुख विचार हुंदी है तत हुंदा है उह हुंदा कि पौड़ी ते पौड़ी दी भी अखीरली तुक सब तों ज्यादा कीमती हुंदी है। ढुकवे सलोक नाल लाए हुंदे ने गुरदेव पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने कहने लगे अपने मन नूं समझाया करो मना तू अंतर आत्मिक

खोजत शब्द वर्तिया इदा पाओ ए भी मन तेरा तृप्त हो जाएगा गुरु की शरण विच आके, पर यह प्राप्ति तेनों ता होएगी जो तू खोजेगा। खोजत पावो, बिना खोजे नहीं गल बननी। आपां तां बड़ा कुछ खोजते रहनी है, अपना काम कार खोज लैनी है, बड़ा चेते रहिंदा सानू भी कल सानू ये काम करना, परसों सानू ये काम करना, सारे काम चेते रहिंदे। सवेर तो लैके शाम तक मनुख बड़ा कुछ खोजदा है, बड़ा कुछ चेते रहिंदा है, चेते रखदा भी है, नहीं भुलदा। पर गल ये है, बंदे तू कदे रब नूं खोजण दा भी जतन करदा कि नहीं करदा। भगत पीपा जी कहिंदे ने, प्यारियो दुनिया दे लोग उस परमात्मा नूं बाहर लभदे फिरदे ने भी उह परमात्मा जिहड़ा कि शायद मंदर विच है, मस्जिद विच है, गुरद्वारियां विच है, गिरजाघर विच है, इवें लगदा भी शायद ये रब दे घर ने, ये रब इत्थे रहिंदा है। पर भगत पीपा जी कहिंदे, कहिण लगे, मेरी गल सुन लो प्यारियो, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। जिहड़ा परमात्मा इस पूरे ब्रह्मंड विच है, ओही परमात्मा इस शरीर विच भी है। पर मनुख बाहर निकल जाता खोजण वास्ते। बाहर उस परमात्मा नूं लभदियां ढूंढदियां बहुत मनुख दुख भोगदा है, पर जे ये गुरु की शरण विच आ जाए तो इसनों समझ आ जाती है भी जिस परमात्मा नूं बंदिया तो बाहर लभदा फिरदा है, वह परमात्मा तो तेरे अंदर ही वसदा पिया। ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने परम दा परम कुलाया, मृग हिरण, हिरण की नाभी दे अंदर कस्तूरी हुंदी है, उहदी अपनी नाभी च हुंदी है कस्तूरी, उहदे चो बड़ी खुशबू आउंदी है। पर यह हिरण जिहड़ा है इसनू पता नहीं हुंदा, इसनू यह नहीं पता हुंदा भी मेरी अपनी नाभी चो खुशबू आ रही है, यह उस खुशबू नू बाहर लभदा है, बहुत दौड़दा है उस खुशबू नू लभण वास्ते। आखिर यह थक के मर भी जाता है। बहुत सारी लुकाई का यही हाल है जिहड़े उस परमात्मा नू बाहर ही लभदे रहिंदे ने, कदे अंदर झात मार के नहीं देखते भी मेरे अंदर भी वह रब वस रहा, नहीं झात मार के देखते। पर भगत पीपा जी तो कह रहे हैं, गुरबाणी एक बार नहीं बार बार ये गल समझाती है, जिहड़ी वह सत्या है, जिहड़ी वह पावर है, जिहड़ी वह ताकत है, वह बाहर भी है तेरे अंदर भी है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। पर मिलदा उहनू है जिहड़ा खोजदा है, जिहड़ा खोजे ही ना, घरों बंदा निकले ही ना भी मैं कम ते जाना ही कोई नहीं, पैसे मेरे घर चल के आउणगे, फिर तो बहुत मुश्किल काम है, करना तो कुछ पएगा, मेहनत तो करनी पएगी। एक काल्पनिक घटना है, काल्पनिक एक साखी है, गुरमत विच किते नहीं है, काल्पनिक एक साखी है, क्योंकि मैं पहले ही जिक्र कर देवा। एक नौजवान वो बड़ा सुनदा है भी सारिया नू रब दिंदा है, सारिया नू रब ही दी जांदा है। वो कहिंदा भी
ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ

ले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सुख मांगा मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

तख्त निवास सच मन भाण चौदस चौथे थाम लह पाव राजस तामस पाताल समाए राजस तामस सतकाल समावै ससियर कै घर सूर समावै जुग जुगत की कीमत पावै चौदस भवन पाताल समाए खंड

गुराये नमः, जुगाद गुराये नमः, सतगुराये नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मिटावो। सिमराओ जास विश्वंभर एक, नाम जपत आगनत अनेक, वेद पुराण सिमरित सुधा खेर।

प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जनका दा संदसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी।

छोड़ झूठ संग मचा, जो छड़ना सो अस्त्र कर माना, जो होवन सो दूर पराना है। छोड़ जाए तुसका शरम करै, संग सहाय तुस पर हरै, चंदन लेप उतारै तो हे गर्दा प्रीत भसम संग होए। अंधकूप में पतत विकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक बिचारा करे दिन रात। बाहर पेखन तरमल माया, शब सनाए कश करा छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ समान। अंतर अगन बातन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाहा, जाके अंदर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुनंदा कैसे मार्ग पावे, कर गए रेहो ओढ़ निभावे, कहाँ बुझारत बुझे डोरा, निष्कय तो समझे पूरा, कहाँ बिसन पद गावे गंग, जतन करे तो फिर सरभंग। कै पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू आवस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तराए।

ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सुर नानक, ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन मा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथियारा जाया दाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाना।

भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंते बिंसा सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मन खोवे तस भगवती की मत उत्तम हो वह भगवंत की टहल कराय नित नीत मंत्र मंथन अर्पय बिशन प्रीत हर के चरण हृदय पर सावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो

ने मुझ ते काशोए तब सुख सुख नाही कोए जबे जाने मैं किश करता तबला गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही चीत तब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु के प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छुट्टे सहज खटे ला

राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जा घटे, संत के दुख ने जमते नहीं छुटे, संत के दुख ने सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख ने मत होए मलीन, संत के दुख ने सो बाते हीन, संत के हाथे को रखे ना कोए, संत के दुख ने थान भ्रष्ट होए, संत कृपाले कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तर, संत के दुख ने देह मुख पावे, संतन के दुख ने काग जो लवे, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जल, संत के दुखन सब कोशल है, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी गाथाओं को नाहे, नानक संत भावित होए भिगत पाए, संत का नंदक महात ताई, संत का नंदक इंट गन्ना भाई, संत का नंदक महात हरा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, संत का नंदक राज ते हीन, संत का नंदक दुखी यार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत भावित उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुखना सुखते ठहरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत भावित लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच से टूटे, संत का दुखी कते काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंदर दे तोता, जो सास बिना मृत की लुथा, संत के दुखी की जड़ की शना है, आपन भी जापे ही खाए, संत के दुखी को अपना राखन हार, नानक संत भावित लय उबार, संत का दुखी एऊं बिललाए, जल भी हूं मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भुखा नहीं राजे, जो पावक इंद्र नहीं तरापै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म तेरा, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत नंदक का तुरही पया, नानक जोत सुभावे सोई थिया, संत का दुखी बिगडूबोए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय, संत के दुखी की पूजना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना दृष्टा कोय, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटा कोय, नानक जाने सच्चा सोई, सब कर तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद को दिन रात से त्याव, सास गिरास सब कुछ भरता है तिसका की

जलमथा। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनमंद गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी। एको एक एक पछाने, एतु दुखी हो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिने निरंजन जान्या। गुरप्रसाद अपने आप सुजे, दिसगी जानो तृष्णा बुझे। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते अर्जन रह। तन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण। एक उपर जी जन की आसा, तिसकी घटिए जमकी फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस ना लागे दुख। जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे, सो संत सवेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा कराए, सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टा, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदा सीजा, गुरप्रसाद तस बुझा। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई सूल। नह के जन्म न किश मरे, आपना चलते आप ही कराए। आमन जामन दृष्टान दृष्टा, ज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रज था बोधाब। अभिनाशी नाई किश खाण धारण धारे ब्रह्मांड। अलख अभे पुरख प्रताप, आप जपायता नानक जाप। जन पर जाता सु सुभावन, सगल संसार द्रय तन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदार, प्रभु के सेवक दुख विसार। नापे मेल लय कृपार, गुर का शब्द जप है निहार। उनकी सेवा सोई लागे, सुनो कृपा करे बट भागे। नाम जपत पामे विश्राम, नानक तिन प्रको उत्तम करमान। जो कुछ करे सो प्रभु का रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुभाय होवे सोए करने हार, पछाण सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, स्तिव जत समाये समाये। वे सुख निदान उन्हों बन आए, आप सुआप दिनों मान। नानक प्रभु जने को जान, सलोक सर्व कला भरपूर। प्रभ बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उदरिया। नानक दस बलिहार, अष्टपदी।

नाना जल्द करे कर माहे पूर पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत मनाई अपनी की मंदया बे भाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खर नाओ नाम के धारे सगले जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मण नाम के धारे सिमरत भेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल नाम के धारे सगले आकार नाम के धारे पुरिया सब पम नाम के संग संग संग उधरे सुन सरवन कर कृपा सपने नाम लाए कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान कर दू सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाह समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सपली सत नाम प्रभगा सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत जन जागा हृदय परवे सत निरत बुझे जय को नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गात जिसकी सरठसो करने हार वरना बूझ करत बिच करत विचार करते कीमित ना जाने किया नानक जो तस भावे सुबरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझा तस आया स्वाद प्रभु के रंग राज रहे गुर के भजन पदार्थ लहे वे दाते दु काट नहा जाके संग तरह संसार जनका सेव सोवट भागी जनका संग एक लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावह गुर प्रसाद नानक फल पावह सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानकोसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत बेखनहार नाम सत सत अमनहार आप सत सत शब्दारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सज सुनता बुजन हार को सत सब हो नानक सत सत प्रभ सोए सत रूप हृदय जन मान्या करण कराम दिन मूल बछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तस मन प्रगटाया भैते नर पोए बसाना जिसे जिसदे उपजा तस माहे समाना वस्तमाए ले वस्त गडाई तागो भिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक पर पालन हारा सेवकी राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ संभार अपने जन का प्रदा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि गतमित कोय ना लाखे प्रभु के सेवक का को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे

राम प्रभसार प्रभु की दृष्ट मां सुख होए अर्थ पावे बिरला कोय जिन चाख्या से चंद्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग पुजे चाओ साध के संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश संदिल लिब लाग बटभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवा की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवा की नो सदा निहाल बंधन गाड़ मुख जन भया जन मन दुख भ्रम गए शून्नी सरदा सब पूरी रवरिया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सोग बिसरे जे काल ना भाने सोग बिसरे जे किया जाने सोग बिसरे जन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगर में राखे गुरप्रसाद को बिरला राखे सोग बिसरे जे बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गंढ है गुरपूरे तो यह बुझाया प्रपना नानक जन त्याया साजन संत करो यह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभ्रह नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भक्ति तनो सी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम मुड जात पाए विश्राम सगल दुख अवदनास नानक नाम जपो गुंदा सब जी उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर ही सुवाओ नेत्रोपेक दर्श होए मन बिकसे साध चरण तोये।

संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुरे सुभजन सर्व्यापी राम संगरचन जिन जाता तस्की रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुखमान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर भी हो ही नानक दर्शन देख सब हो ही आप सद किया सब सत तस प्रभते सगली उत्पात तस

अष्टपदी पूरे गुरका सुनपदेश पार ब्रह्म निकट कर बेग सा सिमरो गोबिंद मन अंदर की उतरा चेंदयास अनेत त्यागो तरंग समझना की दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तरो हर तन के पर लियो पंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चेत च

रुतम सलोक साधके भजन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आपत रहे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंध करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुसरण ही आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण वही सेवा की सेवाल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संदरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण हो प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते उज पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब योग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कह माध्यम सगल ते उदास सुंदर चतुर तथका बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने यो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकीगत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सेमृत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम कोट अपराध सास संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर्म प्रभाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिजन आपे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाव ते तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे बै भरम साध नाम निर्मलता के कर्म

विचार ऐसा नाम निरंजन होय जिक मन जाने मन कोय मन सुरत होवै मन बुद्ध मन सगल भवन की सुध।

असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर

के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पात साही पात साहु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारी है अमुल पंडहर अमुल आवहे अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुल समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान

लेख जाने लेख लेख धर्म विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्यां दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुर गावच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अड़सर तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से

लाख बीस लाख लाख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश सेहत राह पद पवड़िया चढ़िए हुए अकीस सुन गलाया काश की कीटा आई रीस नानक नजरी पाई है कूड़ी कूड़ा थीस।

अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियांग प्रयाचंद, नमो सर्वमाने समस्त निदाने, नमो देव देवे पेखी पेहवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पाण पाने, नमो मान माने,

एक मुहूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जान ही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरे चतर चाक मान ही पुरतीन।

त्रय प्रथिसे अधिसे अदृश्य कृष्य भगवति शांत व प्रसाद कहते क्या छेज देश है क्या भेज भेस है क्या गांज कर्म है क्या

प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे अपंगंग विपुते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न महते न जात न पात निरसाकं सरीक है मितो मीक सदैव प्रभा है जय है जाह भगवती शांत वे प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेसल सलाम है सुबहतल कलाम है के सहब दिमाग है के उसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांत है के राज करहिंद है करीमल कमाल है के उसनल जुमाल है गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है

है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खाल खंडस है परते पर है कर्ण कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है कर्ण कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है

कलहकर्ता। नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके। नमो आस आसे नमो बांक बंके। अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे कहरी छंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगांजे अपांजे अले अले अगांजे अपांजे अलख पाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनि अमोनि नरागे नरंगे न रूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे लेखे पजंग प्रयाशंद नमहतर प्रणामे संबहतर प्रणासे अगंजल नामे संबहतोल निवासे कामं बेपूते संबहतर स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीम करींदा समातल निवासी अजय विभूते गजय गिनी में हरि अंग करी अंग करी मही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं सुभंग सर्वदा सर्वजुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व

कथियो कथ कहानी। हे मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू, सुन मन मेरिया एह माया मोहनी, जिन एत

आयो कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आयो मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया

जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर

का हुई पासवर्ड फोर सदाया वटा हुआ दुनिया दर का संकर का चलाया अग्ञाय करने कीर्त वाचा बेले का कर समझाया था नौ ही बोधि सुने कैरू आया मनंदा जल गवाया मनंदा जल।

वस्तु अंदर वसम दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला।

काहे बिन गुर शब्द ना छूटस कोए पाखंड कीनै मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडरज फोड़ जोड़ विछोड़ तरत आकाश किए बैसन को थाओ रात दिनंत किए पाओ पाओ जिन किए कर वेखण हारा अवरना दूजा सिर जनहारा तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देव उपाए वेसा ज्योति जाति गणत न आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाय चारे बेदा खाणी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा खट तीन उपाए सो बुझै जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा प्रणवत नानक हम ताके दासा पंचमी पंच भूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द त्रिपतासे एक रंग राते एक मर धूर एक दर कर साचे देख हदूर झूठे को नाही पत नाओ कबू ना सुचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए छेरी पर मैं मुक्त ना होए ताओ छूटे जा खसम छडाए गुरमत मेले भगत दृढ़ाए खष्टी खट कर्म प्रभ साजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रभ भावे ता महल बुलावे शब्दे भेदे तौपत पावे कर कर वेस खपे जल जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी सात संतोख शरीर सात सुमंद भरे निर्मल नीर मज्जन सीर सच हृदय विचार गुरु कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म अराध पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमें मनुआ रया लिव लाए प्रणवत नानक काल ना खाए नौ नौमी नवे नाथ नवखंडा कटकट नाथ महाबलवंडा आई पुता ए जग सारा प्रभ आदेश आद रखवारा आद

हो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीता, जय प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीता। जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान।

चार सगल जंजाल दोहरा बाल छोटे क्यों बंधन पारी कछु न होती उपाय कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सुहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होती उपाय कहो नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो तो सुहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होती उपाय नानक सब किछ तुम

मिलावही। तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसिहिरी लय भार जा संगलाई पांचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र भी मंगलन सुहाई। सरस बाने वाहे बनुदा गावे सरस बसंत कमुदा अइट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीप की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही आलाप काम दिया गुजरी संग दीपक के थाप।

संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते पनीत कह ते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे।

सत बनता कोई न किसकी तरह सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाउ करया उड़ा उड़िया वैसे को सत पाछे बिचरे चरिया तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में

है संसार। जिन खिन पल नाम ना विसरे ते जन विरले संसार रहाओ। ज्योति ज्योत मिलाइए सुरती सुरत संजोग। हिंसा होमें गात गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संजोग। काया कामण जे करी भोगे भोगण हार तिस्यों नेह न कीजी जो दिसे चलण हार। गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल प्रगासे अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगाह।

मोह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार श्री राग महला पहला कर चौथा एक सुरत

असी बोल विगाड़, विगाड़े बोल तू नदरी अंदर तोलै तोल। जह करनी तै पूरी मत, करनी बाजों घटै घट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होय, आप पछाणे बूझै सोय। गुर प्रसाद

जग आया पूरे गुर की सेवना कीनी बिरथा जन्म गवाया राहाओ आपे जग जीवन सुखदाता आपे बख्श मिलाए जी जंत ए क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दी वड़ियाई आपे सेव

पाए। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते हुए सखाए, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरु आप न जाई। हर जियो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वड़ियाई।

गुरु मत्ते साध मन वस्या सच रहे लिवलाए मन मेरे गुर की मन रजाए मन तन शीतल साब थी है नाम वसे मन आए राह जिन कर कारण धारिया सो इसार करे गुर कह शब्द बछाणिए दया पे नजर करे।

मन जपै कुमरार तिन के सेवा धर्म राय करे धन सुवरन हर मन के बिकार मन तज मन चुके मोह अभिमान आत्म राम पछाण्या सहजे नाम समान बिन सत गुरु मुक्त न पाई मन मुख फिरे दीवान शब्द न चिन्ह कथनी बदनी करे भिख्या माय सुमार साब किसे आपे आप दूजा अवर न कोय जो बुलाए त्यों बोलिए जा आप बुलाए सोए गुरु मुख बाणी ब्रह्म शब्द मिलावा होए नानक नाम

संग समाओ। हर जपिए हर आदिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी तिस सच ज्यों, मरे न आवै जाए ना आवै ना विछोड़िया विछड़े सब मेरे है समाए। दीन दर्द दुख भन्ना सेव कै सत पाए, अचरज रूप निरंजनों गुरु मेल आया। माए भाई रे मीत करो प्रभ सोए, माया मोह प्रीत त्रिग सुखी न दिसे कोई रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा उच्चा वड्डा अपार। बालक बिरद न जानिए निश्चल तिस दरबार, जो मंगिए सो पाइए ने धारा आधार। जिस पेकत किलबिख रहै मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याइए मन की लहे भ्रांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराधे दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन धन अर्पी सबो सगल वारिये। इह जिंद देख सुने हदूर सद, घट घट घट घट ब्रह्म रविंद। कीर्त घणा नू पालदा प्रभ नानक साध बगसिंद। श्री राग महला पंजवां, मन तन धन जिन प्रभ दिया, रख्या सहज सवार। सर्व कला करथा भयंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरी अंतर राख उरतार। मेरे मन हर बिना वरना कोई, प्रभ सरनाई सदा रहो। दुख ना व्यापे कोई रहाओ, रतन पदार्थ मानका सोईना रूपा खाक। मात पिता सुत बंदपा कूड़े सभ्य साख, जिन कीता तिसन जाने मनमुख पास। ना पाक अंतर बाहर रव रहा, तिसनू जाने दूर तिसन लागी रच रहा। अंतर होमे कूर, भगती नाम भी होने आवै वंजै पूर। राग लियो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया। बिन प्रभ कोई न रखण हार, महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवां, मेरा तन अर धन मेरा, राज रूप मैं देश। सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश, हर नाम हृदय न वसई कार्य किते न लेख। मेरे मन हर हर नाम त्याय, कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए। रहा नाम निदान त्याये मस्तक होवे भाग, कर सब सवारी है गुर की चरणी लाग। होमे रोग प्रम कटिए ना आवै ना जाग, कर संगत तू साधकी अड़सठ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा इहो सुआओ, इथे मिले वडाइयां दरगे पावै थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किश तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवां, सारण पए प्रभ अपने गुरु हुआ किरपाल। सतगुर कै उपदेसें बिनसे सर्व जंजाल।

विसार रहाउ। गुण गोविंद गुण गोविंद नित गाविय आप गुण कट्टन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिफती रत्या पाप जल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा पाइये। साधु तूर लोक कमावै किसे ते, जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रिया प्रभ मेरा पार पूर। सच पात साही अमर सच, सचे सच्चा थान सच्ची कुदरत। धारियन सच सिर ज्यून जहान, नानक जपिए सच नाम हों सदा सदा। कुरबान श्री राग महला पंजवा उद्दम।

कस खाए आसा बंद चलाइए मुँह मुँह चोटा खाए अवगण बदा मारिए छुटे गुरमत नाए सर्वे थाई एक तू ज्यों भावे त्यों राख गुरमत साचा मन बसै नाम पलो पत साख होमै रोग गवाइए शब्द सचे सच भाख आकाशी पताल तू त्रिपवन रहा समाए आपे भगती पाओ तू आप है मिले मिलाए नानक नाम ना विसरे ज्यों भावे तिवै रजाए श्री राग महला पहला राम नाम मन विद्या अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रभरातो सुख सार ज्यों भावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाए जिन तन मन साज सिगारिया तिसेती लिव लाए रहाओ तन बसंतर होमिए एक रति तोल कटाए तन मन सबदा जे करी अंदन अगन जलाए हर नामे तुल न पूजई जे लख कोटि कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत तराए तन हमन चल गालिए पी मन ते रोग न जाए हर नामे तुल न पूजई सब ठिठी ठोक बजाए कंचन के कुड़दत करी बोहैवर

सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो जब दे साधु संगत पाए गुर पेड़ तो गई बलाए साध साध हर गावे नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पढ़दा जियो माज महला चौपंजमा ओत पोत सेवक संगराता प्रपत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक के ठाकुर ही का आहार जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहिब पावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सबद जाने ठाकुर के सेवक हर रंग माने जो किछ ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठहर ही संग जाहर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहर ना लेखा पुछ बुलाया तिस सेवक के नान कुर्बानी सो गहर गबीर गौ हर जियो माज महला पंजमा सब किछ करमे बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सोहेला जियो चिम चिम बरसे अमृतारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया साधु कृपा ते सूखा हरिया समत पाए नाम त्याए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक परम कटे किवाड़ा बहुड़ न होइए जोला जियो महाज महला पंजमा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया बार बार जाई तिस विटो जो मन तन तुद अराधे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चालै नैन निहली तिस पुरख दयालै मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रभ लाधे जियो से बडपागी जिन तुम जाने सबके मदे अलिप्त निर्बाणे साध के संग उन पौजल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण परिया मन मेरा मान तान तज मुहे अंधेरा नाम दान दीजे नानको तिस प्रभ अगम अगाधे जियो माल माज महला पंजमा

मोहे प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, सीजन जागे जिन नाम प्यार, सहजे जागे सवे न कोई, पूरे गुरते बूझे जन कोई राव, असंत नाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे तै माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे, इस युग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप तरे सगले गुल उधारा, आप तरे सगले कुल उधारा, इस कलयुग में कर्म धर्म न कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को मुक्त न होई, गौड़ी महला तीजा ग्वारीरी, सच्चा अमर सच्चा पात साहो, मन साची राते हर भी प्रवाह, सच्चे महल सच नाम समाहो, सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो भव जल उतरो पार रहाओ, पर मैं आवै पर मैं जाए, ए जग जन म्या दूजे पाए, मन मुख ना चेते आवै जाए, आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एह जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, कृपा कर सतगुरु मिलाए, एको नाम चेते बिचो भरम चुकाए, नानक नाम जपै नाओ नाओ निध पाए, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, जिन गुरमुख त्याया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे भाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मत उत्तम होए, सहजे सहज समावै सोए, दूजे पाए न सेव्या जाए, होमे माया महा बिख खाए, पुत कटंब ग्रह मोहया माए, मनमुख अंधा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदिन भगत गुर शब्दी होए, गुरमत बिरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे हुई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम तन हर तूट न होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम न कीजै, गुरमत गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे उर तारे, नाम रते पौजल उतरे पारे, सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निज करवासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख वखाणी, आंदन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नह केवल निरबाणी, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हिरदे नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द हमीठा, गुर कृपा ते किने विरले चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांध्यो माया फास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा, गौड़ी बैरागण, जैसे ही धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मदै पानी नाही, जैसे धरती मदै पानी परगासिया, बिन पग्गा वर्ष फेराही, बाबा तू ऐसा भरम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाई रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या ओ कर्म कमाही, नाना रूप सदा हह तेरे तुझे माहे समाही, इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही, तीरा शब्द तू हह आपे भरम कहाही, नानक तत तत से मिलया पुनरप जन्म न आही, गौड़ी बरागण महला तीजा, सब जग काले वस है बादा दूजे पाए, होमे कर्म कमाम दे मनमुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरनी चित लाए, गुरमुख नाम निधान लै दरगे लै छाए रहाओ, लख चौरासी भरम दे मन हट आवै जाए, गुर का शब्द न चीनियो फिर जो
ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਅੰਦਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਸੁਖ ਸਮਾਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ, ਹੋਮੈ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪਈੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਪੇਵਕੜੈ ਗੁਣ ਸੰਭਲੈ, ਸਹੁਰੈ ਵਾਸ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਸਸਰੇ ਪਈਏ ਪਿਰ ਵਸੈ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਵਿਦ ਪਾਈਏ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਆਈਏ ਰਹਾਉ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਮਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਬੜਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਐ, ਹੋਮੈ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਈਏ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਨਾਏ ਲਾਈਐ, ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅਗਿਆਨ ਇਆਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੇ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਾਸ ਪਾਇੰਦੇ, ਗਰਭੇ ਗੱਲ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏਵੇ ਭਾਵਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਮਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ,

बिपत ताहा जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरिया दुख रोकने रे, प्रभ सेवा जम लगे नाने रे। सोबड पागे न चलथान, जय जपिए प्रभ के बल नाम। जय जय नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजमा, जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। साधु संग सिमर गोपाल, बृणामे साधु झूठा तन माल रहो। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभु का पाणा। जग में आया सो परवान, घट घट अपना स्वामी जाने। कहो नाने जा के पूर्ण भाग, हर चरणी ता कामन लाग। टो गौड़ी महला पंजमा, हर के दास्यों साकत नहीं संग। ओ बेखई उस राम को रंग राव, मन अस्वर जैसे तुरी सिगारी। ज्यों का पुरख पुचारे नारी, बैल को नेत्रा पाए दुहावे। गौ चर संग पाछे पावे, गाडर ले काम तिन कर पूजी। सौदे को तावे बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत। सिमर स्वामी हर साहिब मीत, गौड़ी महला पंजमा। सामत सामत निर्मल के अतीर, राम रसायन पीवत वीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट राहु। सो तन निर्मल जित उपजे न पाप, राम रंग निर्मल प्रताप। सा संग मिट जात विकार, सब ते उचे हो पुकारे। प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाते साध रवाल। गौड़ी महला पंजमा, सी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल लय पूरन बड पागी, राव परता पेख बिकसे ज्यो नारी। त्यों हर जन जीव नाम चतारी, पूत पेख ज्यों जीवत माता। उत्पूत जन हर्षो राता, लोभी आनंद करे पेख तना। जन चरण कमल स्यों लागो मना, बिसरन एक तिल दार। नानक प्रभ प्राण दार, गौड़ी महला पंजमा। राम रसायन जो जन की दे, चरण कमल प्रेम भगति। बिदे राव अन रसा दिसे सब चार, नाम बिनाने फल संसार। अंध कुवते काढे आप, गुण गोविंद आचरज प्रताप। वाण त्रण त्रिपवन पूरन गोपाल, ब्रह्म प्रसार जी संग दयाल। कौ नानक सा कथनि सार, मान लेत जस सजनहार। गौड़ी महला पंजमा, नित प्रत नावण। राम सर की जय, चोल महारस हर अमृत पी जय। राव निर्मल उदक गोविंद का नाम, मजन करत पूरन सब काम। संत संग तै गोष्ट होय, कोट जन्म के किल बिख खोय। सिमर साध कराय आनंद, मन तन रवे परमानंद। जिसे प्राप्त हर चरण निधान, नानक दास तिसे कुर्बान। गौड़ी महला पंजमा, सो किछ कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में हो मन जागे, रहो एको सिमर न दूजा पाओ। संत संग जब केवल नाओ, कर्म चर्म नेम व्रत पूजा। पार ब्रह्म बिन जान दूजा, ताकि पूर्ण होई काल। जाकि प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपरअपार। कौ नानक जन तजे बेकार। गौड़ी महला पंजमा, जीवत छाड़ जाहे देवाने। मोया उनते को वरसाने, सिमर गोविंद मन तन तोर लिखिया। काहू काज न आवत बिख्या, राव बिखे ठगोरी जन जन खाई। ताके दर्शन कब न जाई, दारन दुख दुतर संसार। राम नाम बिन कैसे उतर पार, सा संग मर दोय कुल सार। राम नाम नानक आराध, गौड़ी महला पंजमा। गरीबा उपर जे खिंजे दाड़ी, पार ब्रह्म साय अगन में साड़ी। पूरा नेव करे करतार, अपने दास को रखनहार। रावा दुगार प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज बड ताप। जिन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए। अपने दास राग कंट लाए, सरनान कर नाम चाहे। गौड़ी महला पंजमा, महजर चूठा कि दोने आप। पापी को लागा संताप, जिसे साई गोविंद मेरा। तिस को जाम नहीं आवे नेरा, राव
साची दरगाह बोले कोड़ा सिर हाथ पे छोड़ा अंधा मुड़ा रोग व्याप कर दे पाप अदली हो बैठा प्रभ आप अपन

0: मार के गण जायन को सा
1: हर का नाम हुआ संग तो सा
0: पेंडे महंत गुबारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को ना

0: हर हर अमृत बरखे।
1: भक्त जना की बर्तन नाम,
0: संत जना के मन विश्राम।
1: हर का नाम दास की ओट,
0: हर के नाम उदरे जन कोट।
1: हर जस करत संत दिन रात।

0: की सेवा
1: नानक पूजय हर हर देवा
0: हर हर जन कह माल खजीना
1: हर हर जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कह ओट सताणी
1: हर प्रताप जन अवर न जानी
0: ओत पोत जन हर रस रत्ते।

0: मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया
1: मिथ्या हम ममता माया
0: मिथ्या राजोवन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ स्त्री सबस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान
0: अस्त्र भक्त साध की शरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस्त पर दर्प हो रहे
0: मिथ्या नेत्र पेख